Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye! होले होले से दवा लगती है होले होले से दुआ लगती है ना। रेडियो मलेशिया वहां देखते हैं सत्य पिलिहाई।